0: नमस्कार ते सिही को हमारी
1: सकल प्रजाज ने आप सवारी
0: सबकन को सब गुण सुख दियो
1: सतरन को परमो बद कियो
0: कट कट के अंतर की जानत
1: भले बुरे की पीर पछाणत
0: मिट्टी ते कुंचर अस्थूला।

0: की पीर पछाना
1: कट कट के पट पट की जानै
0: जब उद परख करा कर तारा
1: प्रजा तरत तब दे अपारा
0: व्या परख करत हो कबहू
1: तो मैं मिलत दे तर सब हूँ
0: जेते बदन श्रेष्ठ सब।

कृपा करी अंबर जगमाता ग्रंथ करा पूरन सोभराता किल विक सकल देह को हरता दुष्ट दोखे अनको शय करता श्री अस्तो जप है दे अल्लाह पूरन करा ग्रंथ तत्काला मन वांछित फल पावे सोई दुख न तिसे व्यापत कोई अड़ल सुने गंग जो जाहे सुरस न पावई।

मन क्रम वचन विचार चौपाई मैं नग्न से प्रथम नाव किसन विसन कभू न त्याऊ कान सुने बैजन दिन सो लिव लागी मोरी पग इन सो महाकाल खबर हमारो महालो मैं किं कर थारो अपना जान करो रखवार वह गए की लाज विचार अपना जान मुझे प्रत परी है जुन जुन सदरे हमारे मरी है देग तेग जग में दो चले राखिया मुय और नंदले तुम हम कर

मिथ्यारा जो बन तन मार मिथ्या कम गुरु विकरार मिथ्या राधा स्त्री सब वस्त्र मिथ्या रंग संग वाय पीख हस्ता मिथ्या त्रोह मुह मार मिथ्या सुपुर कर कुमार न स्थिर भगत साधु शरण नैन को जाप जाप जीव हर के चरण मिथ्या श्रवण

ब्रह्म ज्ञान सौ फल फला ब्रह्म ज्ञान संग सकल धारणान ब्रह्म ज्ञान जाओ पाया सकल संसार ब्रह्म ज्ञान का इकार अंग ब्रह्म ज्ञान का वस प्रभ संग ब्रह्म ज्ञान का नाम आधार ब्रह्म ज्ञान का नाम परवार ब्रह्म ज्ञान सदा सद जागत ब्रह्म ज्ञान अहम बुद्ध त्यागत ब्रह्म ज्ञान का मन परमानंद ब्रह्म ज्ञान का कर सदानंद ब्रह्म ज्ञान सुख सहजन वहनान ब्रह्म ज्ञान का नह विनाश ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म का वीरता ब्रह्म ज्ञान का संहिता ब्रह्म ज्ञान का हुई अचंत ब्रह्म ज्ञान का नरुणवंत ब्रह्म ज्ञान झकर प्रभा ब्रह्म ज्ञान का बड़ प्रता ब्रह्म ज्ञान का दर्श बड़ पागी पाई ब्रह्म ज्ञान को बार बार जाय ब्रह्म ज्ञान का खोज हम ईश्वर नयन ब्रह्म ज्ञान आओ परमेश्वर ब्रह्म ज्ञान की कीमत नाह ब्रह्म ज्ञान का सगल मन वाहि ब्रह्म ज्ञान का कौन जान पेद ब्रह्म ज्ञान को सदा देह ब्रह्म ज्ञान का कथियान जय अदाखिर ब्रह्म ज्ञान सर्व का ठाकुर ब्रह्म ज्ञान की मत कान बखान ब्रह्म ज्ञान की गद ब्रह्म ज्ञान जान ब्रह्म ज्ञान का अंत न पार नान ब्रह्म ज्ञान का सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञान सब श्रेष्ठ का करता ब्रह्म ज्ञान साध जीव नहीं मरता ब्रह्म ज्ञान मुक्त जुगत जिया का दाता ब्रह्म ज्ञान पूर्ण पुरुष विधाता ब्रह्म ज्ञान अनाथ मनाथ ब्रह्म ज्ञान का सब प्रहत ब्रह्म ज्ञान का सकल आकार ब्रह्म ज्ञान का निरंकार ब्रह्म ज्ञान की शोभा ब्रह्म ज्ञान बनी नान ब्रह्म ज्ञान सर्व का तन श्रो कुरता रजो अंतरनाम शर्मा पीख भगवान निमुख निम ठाक नमस्कार नान कुह पर सकल निर सतार अष्टपदी मिथ्या न

भक्तवनास सदा सदा सदा दयालु समस्त मंदान को इन हाल स्लोक उस तत्व करिहानि के जाने अंतरा पारावार नान करजन प्रवरज वह वेदांत प्रकार अष्टपदी कई गोट होई पुजारी कई गोट आचार व्यवहारी कई गोट भय तीर्थवासी कई गोट बान प्रमहा उदास कई गोट वेद के स्रोत कई गोट तपी स्रोत कई गोट आत्म ध्यान तार कई गोट कव का विचार कई गोट आवतन नाम दिया अभिनान कर दे कांतना पावे कई गोट भय अभिमानी कई गोट आंधा ज्ञानी कई गोट कृपन कठोर कई गोट अभिगा तुमने कोर कई गोट पर दर्भ कव हिर है कई गोट पर दुख न कर है कई कोट माया श्रम वाहि कई कोट प्रदेश प्रमाहि जित जित लाभ होती है तित लगना नान करते की जाना करता रचना कई कोट सिद्ध जाति जोगी कई कोट राज रह भोगी कई कोट पंखी सर पे पाए कई कोट पाथर बिरख निपजाए कई कोट पावन पाण वै सुंदर कई कोट देश भूमंडल कई कोट ससियर सूर नखिया तर कई कोट देव दान मंत्र सरसा तर सब समग्री अपना सूत तार नानु जह जह पावे तिह सह नह तार कई कोट राज सतामस सात कई कोट वेद प्राण समृत रसा सत कई कोट की रतन संबद्ध कई कुंड प्रकार जानत कई

जह स्वरूप केवल जगदीश तह शाल शर रगतौ कह कीस जह जो सुजो संग समाय नह किस भूख कौन द्रवताव कर्म करावन करने नान कर्तिका नह समाय रुजब अपन सुबह अपन संग बनाई तब कवन वाय वाय मित्र सुत पाई जय सर्व कलया कह प्रवीण तह वेद देव कह कुचीन जब अपना पुरावर तार तब सगन अब सगन कह विचार जह अपन गुजा अपना वनीरा तह कौन ठाकुर कौन कहिया जीरा विषम विषम विषमाद।

भवत। गुरुप्रसाद परम कन्ह नानकमय हुसा संत जनका पीखन सा ब्रह्म संत जनक हृदय सब धर्म संत जना सुन सौ वचन सर्व्यापी राम संग रचन जिन जाता तिसकी हरह साधु वचन साधु सब कहत। जो जो हुई सोय सुख मान करम क्रम हार प्रभ जान अंतर बसे बाहर व्यू नानक दर्शन दे सब मोह अब सात किया सब सात देह प्रभ दे सकदी उत्पाद देह पावत कर विस्तार देह पावत एक अंकार अनक कला लखी नह जाय जिह पर दलय मिलाय कम निकट कौन कहिया दूरा पिया पाप हर पूरा अंतर्गत जिस सब जनाय नानक तिस जनाव बुझाय सर्वपूता वरतार सर्व नैना पीखनहारा सगल समग्री जाकर तना पंजहा सुना जान खील बनाया गया कर की निमाया सबके माद अलिव तो रहे। जो किस कहना सो आप ही कहे आ गया जाय नान जाऊ पावत नहीं सुनाय।

चौपाई को कहा चौपाई। संबत 1767 कहिजा भाद्रव सुधी अष्टमी रव बारा ती सत द्रव ग्रंथ सुधारा सवैया पाए गहे जापती तुमरे तपती को आह तरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहें मत एक न मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सबै बो भेद कहें हम एक न जान्यो। श्री इस पान कर

सारना अंगीकारो करे तेरा कार सब सुवारना सब नागला सम्राट स्वामी सो क्यों मनो सारी कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाही घर तेरा घर ता तेरा सब किश है जिस देहे सो पावे सदा शिव सलाह तेरी नाम मन सावे नाम जिनका मन वसिया वाजी शब्द कनेरी कह नान सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुरबान कीता गुरु विटो जिस दिया यह वडियाइया कह नान सुनहो संतो शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजी पंच सब तित घर सुभागा शब्द वाजी कला जित घर धारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिन कहो से नाम हर कै लागे कह नानक तै सुख होआ तित कर अनहद वाजे साची लिवै बिन देह निमाणी लिवै बज हो क्या करे विचारिया तुद बाल सम्राट कोय नाही कृपा कर बन वारिया इसनो थाओ नाही शब्द ला सवारिया कह नानक लिवै बज हो क्या करे विचारिया आनंद सब को कहा आनंद गुरु ते जानिया जानिया आनंद सदा गुर ते कृपा करे प्यारिया कर कृपा कह लवे कट्टे ज्ञान अंजन सारिया अंदरोह जिनका मोह तुटा तिनका शब्द सच्चा सवारिया कह नानक इहो आनंद है आनंद गुर ते जानिया बाबा जिस तू दे सोई जन पावा पावे ता सो जांदे जिसनों होर क्या करे विचारिया एक भरम भूले फिरे दा दिस एक नाम ला सवारिया गुर प्रसादी मन भया निर्मल जिन्ना भाना भावे कह नानक जिस देह प्यारे सोई जन पावे आवो संत प्यारे हो कच की करे कहानी कच केरी कित द्वारा पाइया तन मन धन सब सौ गुर तन मन धन सब सौ गुर को हुक्म न पाइया हुक्म न्यो गुरु केरा गाओ सच्ची बाणी कह नानक सुनो संतो कछ हो कछ कहानी ए मन चंचला चतराई कहना ना पाया चतराई ना पाया कहना तू सुन मन मेरे आए माया मोहनी जनेत भरम भुलाया माया ता मोहनी तना केती जन ठगव

सुनहु पवित्र होवहो। साचा सुनना नु पठाई, हर जियो गुफा अंदर रख कै। वाजा पवन मजाया, मजाया वाजा पाऊ। नौ द्वारे प्रगट किए, दसवा गुप्त रखाया। गुरद्वारा लाए भावनी, इकना दसवा द्वार दिखाया। तह अनेक रूप नाओ नव निद, तिसदा अंत न जाई पाया। कह नानक हर प्यारा जियो, गुफा अंदर रख कै। वाजा पवन मजाया, एहो साचा सोहिला। साचा घर गावहो, गावहो ता सोहिला घर साचा। जिथै सदा सच त्यावहे, सचो त्यावहे जा तुद भावहे। गुरमुख जना बुझावहे, एहो

0: सदा
1: सच्चिदानंद सद्भव प्रणासी
0: अनुपे रूपे समस्त निवासी
1: सदा सद्दा बुद्धा बेकर्ता
0: अतोर अर्थ गंगो को हरता
1: परम परम परमेश्वर प्रोच पालं
0: सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालं
1: अच्छे दिए पे दिया नाम कामं
0: समस्त पराजी समस्त सकामं
1: तेरा जोर चातरी छांद जले है थले है पीत है पे है
0: प्रभु है जू है देश है पेश है
1: कुजंग पदया छंद अकाद्य बाद्य आनंदी स्वरूप
0: नमो सर्वमाने समस्त निदाने
1: नमस्तुंग नाथे नमस्तंग प्रमाथे
0: नमस्तुंग गंजे नमस्तुंग पंजे
1: नमस्तुंग काले नमस्तुंग पाले
0: नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे
1: नमो राजे राजे नमो साजे साजे
0: नमो सर्वसाहे नमो महामहे
1: नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते
0: नमो रोग रोगे नमो सुख सुखे
1: नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे
0: नमो सर्व जीतम नमो सर्व पीतम
1: नमो सर्व ज्ञानम नमो परम तारणम
0: नमो सर्व मंत्रम नमो सर्व
1: रात्रम नमो सर्व दिशं नमो सर्व केशं
0: नमो सर्व रंगी त्रिभंगी अनंगे
1: नमो जीव जीवन नमो बीज
0: बीजे बीजे बीजे समस्त प्रसिजे
1: कृपाल स्वरूप एकम प्रणासी
0: सदा सर्वदारित सिद्धल निवासी
1: चटपट छंद पर प्रसाद अमृत काल में अमृत तर में
0: काल जोगे चाल पोगे
1: चाल राजे टाल साजे
0: अकाल तरम लाख कर्म
1: सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता
0: सर्वंग पाने सर्वंग माने
1: सर्वंग प्राणं सर्वंग तरणं
0: सर्वंग जुक्ता सर्वंग मुक्ता
1: सर्वंग देवं सर्वंग पेवं
0: सर्वंग काले सर्वंग पाले
1: रुआल छंद त्व प्रसाद आदि रूप नाद मूर्त जौन पर कपार
0: सर्व मंत्र मान देव पे आदि धारे
1: सर्व पालक सर्व कालक सर्व कोपन काल

0: आपरूपमीकनस्तत् एक पुरक अवधूत
1: गर्भगंजन सर्वपंजन्याग रूपे सूत
0: अंगहीन पंगनातम एक पुरक पार
1: सर्वलायक सर्वकायक सर्वकोपर पार
0: सर्वगंता सर्वहंता सर्वते अनपेख
1: सर्वशास्त्र न जाने जरूर रंग रेख
0: परम वेद पुराण जाके नेत पाकत नित
1: कोट समृत पुराण शास्त्र नावि वो चेत
0: मद्वार्थं त्वत्प्रसाद।

0: गंजय का दे
1: सर्वं सर्व भाग्य सर्व अनुराग्य
0: भक्त स्वरूप अचिज्य अच्युत है
1: प्रतियो निर्वास है
0: रक्त प्रवाह है सदा एवं सदा है
1: भक्त स्वरूप है प्रजोग्य अनुप है
0: रक्त सदा है विभक्त प्रवाह है
1: भक्त स्वरूप है प्रजोग्य अनुप है
0: जाचरी छांदे अपंग है अनंग है अपेख है अलेख है
1: कर्म है नाद है जुगाद है
0: अजय है पय है पूत है तूत है
1: दास है तंद है बंद है
0: भक्त है विरक्त है नाश है प्रकाश है लेख है पेख है टा है गा है
1: नील है नाद है
0: नित है सुनित है जात है जाद है सर्वंगता सर्वंगता
1: सर्वंग्ञाता सर्वंग्ञाता
0: सर्वंगहर्ता सर्वंगकर्ता
1: सर्वं प्राणं सर्वं द्राणं
0: सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं
1: सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता
0: सावल छान त्वा प्रसाद नम नर्क नास्य सदा मुं प्रकाशे
1: अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते
0: परमात्मं परमात्थे सदा सर्वसाते
1: अगाध स्वरूपे निर्वात विभूते
0: अनंगी अनामे तपंगी तरकामे
1: रूपे तपंगी षट्
0: न पुत्रे न पुत्रे न सत्रे न मित्रे
1: ताते न माते न जाते न वाते
0: साकं सरीखे में तो मीख है
1: सदैवं प्रभाहं जय जाहे
0: भगवती छंतवा प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजर हजूर है
1: मिश्र सलाम है समसल कलाम है
0: साहिब दिमाग है के असनल चराग है
1: कामल करीम है के राज करहीम है
0: रोजी देहन है के राज करहंद है
1: करीमल कमाल है के हुस्नुल जमाल है
0: करीमल खराज है करीबुल नवाज है
1: करीफल सकन है रासल फिकन है
0: करंकं पनास है समस्तल निवास है
1: गंजल गनीम है रजाय करहीम है
0: समस्तल जबाह है के साहिब है
1: नरकम प्रणास है विहसल निवास है
0: सर्वल गवन है मेसर वन है
1: नमामं तमीज है समस्तल जीज है
0: परमं परम ईश है समस्तल अधीश है
1: अंदेसल लेख है मेसल पेख है
0: जमीनुल जमा है अमीकुल इमा है
1: करीमल कमाल है जुरत जमाल है
0: केतलं प्रकाश है के मितो सुभाष है
1: के अजब स्वरूप है के मितो विभूत है
0: के मितो पसा है के आत्म प्रभा है
1: के अचलंग अनंग है के मितो अपंग है
0: मदबार छंतवा प्रसाद मन मन प्रणाम गण गण मदाम
1: प्रणाम
0: चिचर नाम
1: अंचांज
0: गाते नरांज बात
1: अंतरण भंडारे अंतरते बारे
0: अतीत करम अतीत करम
1: और प्रणनाथ दाता महंत
0: हर बोल बना छंद पर प्रसाद करना ले है हर काले है
1: हर कंदन है मैं मंडन है
0: जगतेश्वर है परमेश्वर है
1: हर कारण है सर पालन है
0: तत के तन है जग के कर्ण है
1: मन माने है जो जाने है
0: सर्वं पर है सर्वं कर है
1: सर्वासे है सर्वनाशे है
0: करना कर है विश्वम पर है
1: सर्वेश्वर है जगतेश्वर है
0: ब्रह्मंडस है खलखंडस है
1: परते पर है करना कर है
0: जपा जप है थपा थप है
1: कृत है मृतामृत है
0: अमृता में थ करना कृत है
1: कृताकृत है धरनी कृत है
0: अमृतेश्वर है परमेश्वर है
1: कृताकृत है मृतामृत है
0: अजबा कृत है अमृतामृत
1: है कल कायक है
0: विश्वम पर है करना ले है।

0: प्रयात चंद नमो सूर्य सूर्य नमो चंद्र चंद्र
1: नमो राज राज नमो इंद्र इंद्र
0: नमो अंधकार नमो तेज तेज
1: नमो वृंद वृंद नमो बीज बीज
0: नमो रात संतान संत

0: बरे यार बेचारा है सार की तार पे चैया
1: दोनों रत्ते सुमलिंद मासन बाते के जान के मान मलैया
0: गाड़ गड़ांग के तोड़न हाँ सब बातन ही चक चार लवैया
1: साहिब से सब को सन्नायक जा चुकन 101 दवैया
0: दानव देव नेंद ने साचर भूत पवेक भवान जपेंगे
1: जीव जित जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे
0: पन प्रतापन बाट जात धन पापन के बहु पंज खपेंगे
1: सात समूह प्रसन्न फिरे जग सत्र सदा लोक छपेंगे
0: मानव इंद्र जिंदन ने रात बजोंदर लोको राज करेंगे
1: कोटि स्नान के जात के दाने अनेक स्वंबर साज भरेंगे
0: ब्रह्म महेश्वर विष्णु सचिव पति अंत फिर से जम फास

0: एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह है। पाठ सही दसवीं कबे बाच बेंती चौपाई हमरी करो हाथ है रक्षा पूर्ण होई चित की इच्छा। हमरी दुष्ट बै तुम कावो आभात मोहे बचावो हृदय करिए सब बैरन को आचन करिए शार को यफना त्याओ जो पर चाऊ से तुम ते पाऊ
1: सेवक सिख हमारे तारी जन जन सत्र हमारे मारी है
0: आप हाथ से मुझे भरिए मरण काल का त्रास ने भरी है
1: मुझे सदा हमारे पछासिए सुजो करियो रक्षा
0: आज वे मोए रखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे
1: निर्मंद सन के हंता तुम हो पुरी चित तस्कंदा
0: काल पाए ब्रह्मा बप्तरा काल पाए शिव जू अवतरा
1: काल पाए कर विषम प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा
0: जवन काल जोगी सब कियो वेद राज ब्रह्मा जू थियो
1: जवन काल सब लोग सवारा नमस्कार है ताहे हमारा
0: जवन काल सब जग बनायो देव दै जत छनि उपजायो
1: आदि अंत के अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा
0: नमस्कार तिसी को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी
1: सेवकन को सब गुण सुख दियो सतरन को बल मोबद कियो
0: सत की अंतर की जानत पले बोरे की पीर पछानत
1: चिट्टी ते कुंचरे अस्तुला सब पर कृपा दृष्ट पर फूला
0: संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी
1: एक एक की पीर पछाने कट कट के पट पट की जाने
0: जबी कर करा कर तारा प्रजा तर तब देहे अपारा
1: जब अकर्त कर्त हो कब हूँ तुम्हें मिलते तसब हूँ
0: जीते बर्म श्रेष्ठ सब तार है आप अपनी व्यू देवचार है
1: तुम सभी ते रज निरालम जानत भेद भेद अरियालम
0: निरंकार निरप का निरलंब आदनी ले नादय संभ
1: ताका मूल चारत पेदा जाको पेव न पावत बेदा
0: ताको कर पाहे अनमानत महामूर्खत पीर न जानत
1: महादेव को कह सदा सिर निरंकार का चिन्हत न पेवन
0: आप अपनी बुद्ध है जेती मरणत पिन पिन धोए तेती
1: तुमरा रखन जाय सारा के बिच जोत सम संसारा
0: एक है रूप अनूप स्वरूप रंग पे और आप के पूपा
1: अंदर जेर क्षेत्र जगिनी उत्पज खान बहुर जगिनी
0: कौन फूल राजा है बैठा कौन सिमट पे संकेत कैठा
1: श्री श्रेष्ठ दिखाए चंपा आज का स्वरूप स्वयं पद
0: अब रक्षा मेरी तुम करो सिखियो बारिया सिख संगरो ये तो तब सरनी परे तिनके दुख दुख थो है मरे
1: तिनके तुम संकट सब तारे
0: जो कल को एक बार ते आए है ताके काल निकलना ही है पर जिस दिन जाए न्यार हो ताके ताम तन के मैं हर हो एक बार जिन तुम्हें संभारा काल से ताहे उबारा
1: जिनर नाम त्यारो कहा दार दुष्ट दोग दे रहा
0: करके मैं सरम त्यारी आप हाथ ले हो बारी
1: सर्व ठोर मोह हो सहाई दुष्ट दोग दे ले हो बचाई
0: कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सब राता
1: किर्भिक सकल देव को हरता दुष्ट दोग खेल को शय करता
0: तीरस तो जब पे दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तकाला
1: मन वाशित फल पावे सोई दूर ने तिश व्याप्त कोई
0: सुने गुंग जो याहे सरस ना पावे
1: सुने मूल चित लाए चतुरता आवे
0: दुख दर्द पाव निकर न तिन न के रह
1: हो जो या की एक बार चौपे को कह चौपे
0: सम्मत सत्र सहस पर निर्दय अरुष सुन तीन कह जय
1: तवरस दियस नील लवारा तील सुद्र ग्रंथ सारा
0: सोईया पाएंगा ही जब ते तुम्हारे तब ते को आकत रे नहीं आन्य
1: राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न मान्यो
0: सिमरत शास्त्र वेद सब बहु पेद कह हम एक न

गया है। खुले दर्शन दीदार ते सेवा संवार दा दान खासा जी ने बख्शा है न माने अदमान ताने दान उठे उठ सचत दवाई गुरु आप जी दे हजूर पंजा बानिया दे नितनेम दी अदास है जी पानी।

हजूर कर करा प्रसाद देख साज के हाजर है आप जी बगलाओ नामा कक्ष हुक्म ते चलन दा अक्का कक्ष आज्ञा बक्ष से प्यारे मिल चलान नानक नाम चढ़ती कला तेरे

वाहेगुरु जी की फतेह। बच्चों क्लास टाइम शुरू हो गया। बच्चों जेडे येलो वाले ग्रुप है तुसी सारिया ने हिस्ट्री दी क्लास विच जाना है। जेडे ब्लू वाले बच्चे है थोड़ा कीर्तन ते तबला क्लास है। तो जेडे सब तो छोटे ओरेंज वाले बच्चे हो थोड़ा संथिया दी गुरबाणी दी क्लास है इस वेले। सो सारे बच्चों नू बेनती है, थानू मेरी आवाज़ सुन रही है, तुसी प्लीज सारे जने छेती छेती अपने क्लासरूम पहुँचो एंड आपा ज्ञान लईए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।

0: की संगत रहो, जौ की भूसी खाओ।
1: जौ दी तोड़ी थोड़ा कम कटदा है, कट जे गरीबी कट लै, जौ दी तोड़ी खा के गुजारा कर लै, पर नाम जपण वालियां दी संगत ना छड़। कबीर साधु की संगत रहो, जौ की भूसी खा, होनहार सो होए है साथ।

तू अपना बिरध पछाणिया उना नाम जपिया ते तू उना दी बांह फड़ ले। जिन्ना ने तेरा नाम जपिया तू उना दी पैज रखी, जिन्ना ने तेरा नाम जपिया तू उना दी सब थावे रखिया कीती। जिवें उना दी पैज रखी जिवें उना दी रखिया कीती जिवें उना दी

दासी सुत जन बिदर सुदामा, दासी दा सुत बिदर ते फिर सुदामा। अत गरीब सुदामा, सारी दुनिया दा दलिदर इसदे कर, बाल बच्चा टुकर खाण नू मंगदा बिचारे रो के, रात नू भुखे सौ जांदे हन ते सुतियां बच्चियां नू वेख के माता पिता दियां आही निकलदियां हन। ए बदकिस्मत बच्चे किसे होर दे घर जमदे, ए साडे घर आण जमे, असी एडे निकरमे इन्हां नू पाल पोस भी नहीं सकदे। बेचारे टुकर मंगदे सौ जांदे हन, उठदे हन तां मुड़ टुकर मंगदे हन, पर रोटी कित्थों जुड़े, हर वेले विरलापदे हन, पर आखिए रोजी रोटी कित्थों जुड़े, ओ भगवान दा दिता सराफ किधर जाए। जो भगवान कृष्ण महाराज ने एक बार

घर वाली दी कन्नी सरोत पई। एक दिन आंधी है सुनिए भगवान सानू भुल गए सन। सुदामे ने रो के आखिया ओ सानू भुले नहीं। आखिया की सबूत है? आखिया भुलदा उना नू है जो उसनू भुला दिंदे। साध संगत बोलो श्री वाह। कहन लगी जे सानू ओ ना भुल दे ते असी अज एडे गरीब ना हुंदे। इतनी गरीबी साढ़े घर विच ना हुंदी। ता सुदामे नू ओ दिन याद आ गए जिस दिन भगवान कृष्ण ते सुदामा गुरु संदीपन पास पढ़दे सन आश्रम विच। पढ़दे सन ते गुरुदेव दी सेवा करदे सन। जिवें आखिया सेवा करनी सारी नाले पढ़ना ते गुरुदेव दी सेवा करनी। भाग उन्हां दे जागदे हन जिन्हां ने सेवा कीती है। उन्हां दे पुन्नां नूं भाग लगदे हन जिन्हां ने सेवा कमाई है। ते जिसने गुरु नानक दे घर नूं अपना घर जान के सेवा कीती ओ गुरु नानक दे घर दे मालक बन गए। इन्हां ने अपने गुरुदेव दी सेवा कीती। एक दिन शामा पईआं मां ने आख्या बच्चो लकड़ा लंगर विच हैण नहीं। भगवान चट तैयार हो गए मां जी हुणे ले आए। सुदामे ने आख्या मैं भी नाल चलदा क्योंकि बड़ा हित सी आपस विच। कठे खेडना कठे पढ़ना कठे खाना। जिसले दोनों जान लगे माता दे मन विच विचार आया मासूम बच्चे हन जंगल नू जा रहे हन शायद देर लग जाए मत इना नू भुख लगे। लप छोलियां दी पुजे होए सुदामे दी चोली विच पा के आखिया बचियो जे भुख लगे ता खा लैण। सुदामे ने ओ छोले कुर्ती दी जेब विच पा ले। भगवान अगां जा चुके सन सुदामा पिछों दी जा मिले। जिस वेले जंगल विच पहुंचे लकड़ां कटियां चुक के वापस तुरन लगे ता नेथ नाल बारिश आ गई। रात पैण तों पहला ही बदलां ने रात कर दित्ती। इन्हां ने मन विच ख्याल कीता जे हुण टुर पए जंगल दा मसला है शायद रस्ता भुल जाइए। हनेरी चखड़ विच चलना चंगा नहीं हुंदा। बैठ के रात गुजार लईए ता मन विच सोचिया जे थले बैठे मत कोई जानवर आ जाए। इस करके वृक्ष ते चढ़ बैठ देखा एक मुढ़ सी दो टैन सन। एक ते भगवान कृष्ण ते दूसरे ते सुदामा। साध संगत बोलो श्री वाह। क्योंकि नाता है भगती दा। एक बार भगवान कृष्ण महाराज ने अर्जुन नु आख्या सी हे अर्जुन मैं भगतन का भगत हमारे सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी। हे अर्जुन मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं भगतन का भगत हमारे सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी। भगतन काज लाज हो छोड़ो पैर प्यादे तामो जहां जहां पीड़ पड़े भगतन को मैं तहां तहां जाए छुड़ा। अखे जो जो मेरो भगत विरोधी सो वैरी है मेरो देख विचार भगती का नाता मैं रत हांकता तेरो। आखिया अर्जुन तेरा मेरा की संबंध है भगती दा। तू रथ ते बैठा होए ते मैं तेरा रथवान रथ नू चला रहे। ए किस दे सदके ए प्यार दे सदके भाई। जिवें उन्हां नू तारे आ जिवें उन्हां दी बांह

मैं जो आख्या भी मैं कुछ नहीं खा रहे। सत्संग बोलो श्री वाह। आख्या भगवान तुसी मेरे मित्र हो और मित्र दे उते शक करना ये ठीक नहीं हुंदा। ते तुहाडे मन विच ये आया कि मेरे कोल कुछ है और मैं कला खाई जान। नहीं, मेरे पास कुछ नहीं। ता सुदामे ने दूजा झूठ बोले। भगवान मुस्कुरा रहे सन। उस अगे झूठ बोली जांदा है जो अंतरजामी है। हर अंतरजामी सब बिद जाने। उस अगे झूठ बोली जांदा ते जिस वेले मारिया तीजा फक्का भगवान कहन लगे सुदामिया मन ना मन भई कुछ ता खा रहे। आखिया इतबार नहीं आया। कहन लगे सुदामिया मैनू आवाज पई आउंदी है तेरी जबान ते इतबार करा जा अपने कन्ना दे उत्ते। तू सचो सच दस दे मैं तेरे कोलो वंडदा नहीं। सुदामा रोण लग पे है कि तुहाडे कोलो छुपा के की खाना सी। ता अचानक भगवान दे मुंह निकलिया जा ओए दलिद्रे। सुदामा दलित्री हो गया गरीब हो गया। जिवें भाई साहब आखदे हन बेपत सुदामा दाल दी बाल सखाई मित्र सदाए। बाल सखाई मित्र सी सुदामा। एक दिन कारवाली ने आख्या ठीक है कि भगवान कृष्ण तुहाडे मित्र हन। उन्हें आख्या कोई शक है फिर एक बार जरूर जाओ उन्हां दे कोल। किते मन विच ए ना आवे भी सुदामिया तू एडा गरीब रहे हो एक बार मेरे कोल ता आउनो। लागू होई ब्राह्मणी मिल जगदीश दलित्र गवाए। आख्या एक बार जरूर जा। ता बहाना लगाया भी एडे वड़े पास जावा नाल ले जाण नूं कुछ है नहीं। आख्या ए प्रबंध मैं कर देनी हां। गुआंढण दे कोल गई उगों धान पई छटदी सी। उन्हें आख्या मेरे घर वाले ने भगवान नूं मिलण वास्ते जाना है साडे कोल ले जाण नूं कुछ नहीं। जे तू कुछ उधारा देवे। उन्हें लप चौलां दी चोली विच पा दित्ती ते आख्या लै जा। पोटली विच बन के चोल जिसले सुदामे दी तली ते रखे ते आख्या लै जा। भगवान नूं जरूर जाके मिलो शायद साडी गरीबी कटी जाए साडा दलिद्र निकल जाए। आखण लगी तुसी एडे गरीब ते ओ द्वारका दे राजे। सुदामे ने आख्या भगवाने ये सब आपो अपनी किस्मत है। किसे नू किस्मत किधर लै जांदी है। मां जनेंदी सत पुत ते भाग ना देंदी वंड बोलिए आपो अपने कर्म लैने। इस करके वो द्वारका दे राजे सदवाए असी दलिद्री अखवाए। आख्या ए दलिद्र दूर करन वास्ते एक बार जरूर जा। सुदामे दी तली दे उत्ते ओ चावलां दी पोटली रखी ते सुदामा जा रहे है भगवान कृष्ण दे दर्शनन। आजरा को ख्याल करो सुदामे वाले।

सखा तुम पाए महा दुख आए इते ना किते दिन खोए इना दिन किथे रे। रुक्मणी रात का सोने चांदी दिया गागरा भर के ले आई जिसले चरण धोन लगे आओ सखा तुम पाए महा दुख आए इते ना किते दिन खोए देख सुदामा की दीन दिशा करुणा करके करुणा निद रोए नहीं पात्र पानी को हाथ छोयो बस नैनन के जल से पग धो। रुक्मणी रात का जल लेके खलोतियां रहिया नैनन के जल से पग धोए। भगवान कृष्ण ने अपने सोने नैना दे पानी दे नाल सुदामे दे पैर धो दिते। फिर आखन लगे सुदामे आ सुनिया भी तेरा विआह हो गया हाँ महाराज बाल बच्चे भी हैं सुखी हैं तुहाडी कृपा है। कहन लगे सुदामिया जिसले आन लगा सा भाभी ने कुछ खान वास्ते दिता नहीं मेरे वास्ते कुछ ले आया नहीं ओ छोटी जी बोटली जो कछ विच मारी हुई सी चौलां दी जो छुपाई बैठा सी सुदामा। आखन लगे सुदामिया कुछ दिता नहीं चुप रहे अगे हो के भगवान कृष्ण ने वो चावलों की पोटली जिसले कड़ी आख्या सुदामिया अगे वखरे छोले खादे सन तो पोटली खोली भगवान कृष्ण महाराज ने ते जिसले मारिया फका ते आखन लगे बड़े मिठे सत्संग बोलो श्री वाह। सजे खबे रुक्मणी राधका ने हाथ फड़ ले भगवान कच्चे हन पेट विच दर्द करनगे आखन लगे नहीं वही ये भक्त दा प्रसाद भगत दा प्रसाद होवे सही उस विच कोई अनोखा स्वाद हुंदा ये मेरे भक्त दा प्रसाद। कुछ दिन सुदामा भगवान कृष्ण महाराज दे कोल रहा बड़ा प्यार की कथा वार्ता कीतियां दुख सुख फोले ते एक दिन सुदामे ने बेनती कीती भगवान हुण आ गया बख्श बड़े दिन हो गए इत्थे रहिंदिया हुण घर जावा वापस बाल बच्चा उड़ीकदा होवेगा। कहन लगे अच्छा कुछ दिन रहो भाई सुदामे अजे साडा दिल नहीं भरे आ पुराना प्यार चेते आ गए जो बचपन च कठे रह के समय गुजारे सन ओ दिन जड़े कठिया गुजारे सन ओ दिन नहीं भूलते सुदामिया उना दिना दी ए दिन याद हन इस करके कुछ दिन ता रहो। सुदामे ने हाथ चा जोड़े भगवान हुण आ गया बख्श ते कहन लगे अच्छा सुदामिया चल फिर तैनू कुछ दूर तक पहुंचाओ। ते सुदामा मन विच पिया सोचदा भी प्यार ता बड़ा कीता है पता नहीं की कुछ बख्श वड़िया दा कम है दान देना छुपा के देना होशिया दा कम है दान देना दिखा के देना आख्या वड़े लोग हन शायद कुछ छुपा के देना चाहते होण भी प्यार तो बड़ा कीता है। जिस वेले बाहर आए सुदामे नूं छड़न वास्ते कुट गल वखड़ी पाई सुदामे आ फिर भी आ सुदामा मन विच पिया सोचदा भी दिता तां कुछ नहीं बस गली बाती प्यार बड़ा कीता पर कुछ दे दिंदे घरवाली नूं की मुंह जाके दिखावांगा भी मित्र दे कोल गया सा भई उस मित्र दे कोल जेड़ा राजा जिस दे बूहे ते राजे महाराजे नक रगड़दे हन ओ की आखेगी ओदे द्वार तों तूं खाली आ गयो तैनूं कुछ ना मिलिया ए मन विच पिया सोचदा ही सी जिसे कुटगल वखड़ी पाई ते आखन लगे सुदामिया मुड़ फेर आवी पुठे पैरी सुदामा तुरिया कुछ दूर तो जाके जिसले सिद्धी पैरी होया ते सुदामे ने आखिया चंगे एस जमाने दे यार जारो चंगे एस जमाने दे यार जारो जेड़े हाल आए मुड़े जामदे हां केड़ा बख्श दिता सानू माल यार हथों चौल भी दे गवा बैठे
ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਕੋਈ ਚੌਲ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਖਾ ਗਏ। ਜੇ ਨਾ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡੰਗ ਉਬਾਲ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਗਏ, ਕੁਝ ਨਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਬੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੁਦਾਮਾ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੋਰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ ਤੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਕੀ ਡਿੱਠਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੀ ਚੁੱਗੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮਹਿਲ ਖਲੋਤਾ। ਸਤਿਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਉਂ ਬਈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸੁਦਾਮੇ ਦੀ ਚੁੱਗੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੁਦਾਮਿਆ ਇੱਥੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮੰਦਿਰ। ਹੈਰਾਨ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਸੁਦਾਮਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸੋਨੇ ਦਾ। ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਆਈ, ਪੈਰੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਸੁਦਾਮੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮੰਦਿਰ। ਉਸਤੇ ਵੀ ਨੇਤਰ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਆਖਦੀ ਹੈ ਸਵਾਮੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ, ਸਾਡਾ ਦਲਿੱਦਰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ। ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਪਏ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮੰਦਿਰ, ਅੰਦਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਭ ਕਿਰਪਾ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਹੈ।

अज भगवान कृष्ण महाराज की कृपा का सदका सुदा मेनू चार पदार्थां की प्राप्त हो गई। जिवें बाणी विच आख्या चार पदार्थ जे कोई मांगे साध जना की सेवा लागे। जे को अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सदगावे। जे को अपनी शोभा लोरे साध संग ए होमे छोरे। आखे जे को जन्म मरण ते डरे साध जना की शरणी। जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा नानक ताके बल बल जासा। जिन्हां ने गुरु घर दी सेवा कीती है भई प्यार दे नाल मन खरके पर उपकार दा जीवन जीवे है उन्हां नूं साईं ने बख्शिशां कीती रहमतां कीतियां ने। ते जिन्हां ने तेरा नाम जपिया आखिया जपहीन तपहीन कुलहीन कर्महीन। जपा तो हीने तपा तो हीने पर जिन्हां ने तेरा नाम